जोचोलपाथा नेपाल सम्भ छिन्छसवपी खुद गुनलागा चतुर्दशी थो रेडियो नेपाल ख आनेनादिस जिरुबी पाखे नेपाल भाषा समाचार। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल भोटे कोशी खुसीबान लापिन त थथ्य व्यवस्थापन सडक यातायात याकेको नापा पुननिर्माण व पुनस्थापना नापाया ज्यायाता याक न्याकेत सरकार ध्यानको सल्लाह दिगुदु। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल व पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सार नापा राष्ट्रपति भवन शीतल निवास मिग ब्याक्ल ब्याग्ल सल ब्याका दिशे सडक न्याकेको नापा खुसीबा हाठ्या फया चोपिन्ता ब्याया नीति होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापन या ज्या थथे न्याकेता सरकार या नुग कोसाला दिगु ख वैकल भौगोलिक हाठ्या या ता ख्या याना सडक यातायात न्याके गुली हाथ्या दुसा त धङ्गु बेली ब्रिज नापाया पूर्वाधार देखे गुली अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय ग्वाली नापा कायाता सुचौ बिया दिल। नापा वैकल जलवायु हुपाया हुने नेपाल फेमाला चोङ्गु कष्ट या ता क्षतिपूर्ति क्या दैगु याना प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नापा सल हुने मागुली सुजन बिया दिल। नाप्ला ज्याझोले मन्त्री खनाल व लम्साल मोनी निहाय सडक यातायात नापा थेहे न्याके फैगु याना खुसीबा लिचो लापी मनुतेगु ब्याया नीति अस्थायी टहरा क्याप्सुल होम देखे फैगु याना निचा मधासे ज्याना चनागु थया दिल। थोयदेखि वैकपैसा वैकल्पिक सडक देखेगु ज्याता सरकार आप्ला न्याका चनागु ताहागु बेली ब्रिज तेगु नीति मित्र राष्ट्र नापा इनापिया धुङ्कागु व थिथि ज्वलन्त वैगु छोन ह्याना चोङ्गु मेगु मागु ज्याधल सरकार ज्याका चनागु लिसबिया दिल। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सोङ्गु तल सुरक्षा निकाय प्रमुख पि नापा सल ब्याका दिगुदु। थोय भतौ दस गते रसुवाया भोटे कोशी खुसी सङ्गु खुसी पालिपा बोलङ्गु लकस मुक्क मालेगु ज्या उदार हात इनेगु वास नापाया विशेषण सल याना दिगु प्रधानमन्त्री ओ मन्त्री परिषद या कार्यालय धागुदु। सिंहदरबारे दुगु प्रधानमन्त्री ओ मन्त्री परिषद या कार्यालय जुगु सल लिपा मागु उज नापा बिया दिगु मन्त्री परिषद या कार्यालय धागु ख। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाया सभापति रवि लामिछाने हाठ्या इले जलवायु न्याय नीति विश्व समुदाय दथि सकल राजनैतिक दल दथि छप छुया दनेता इनाप्याना दिगुदु। प्रतिनिधि सभा मिगया बैठके यी फना नुवाना दिसे सभापति लामिछाने विपत्या इले सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष मधासे राष्ट्रिय एकता हो मानवीयता लिधंसा सकल छपा जुई मागु यी वो गुधया दिगु ख। सभापति लामिछाने हाठ्या जागु थो इले सकल मनोदथी सामाजिक सञ्जाल पाके मामनुगु कुङखिनेगु कटाक्ष व साइबर बुलिङ मयाता इनाफ्याना दिल। थगु छुन गल्ती मधुसाना जलवायु पा फुक्क सोया त धङ्गु मु पुलेता बाध्य जुपी निर्दोष मनोतेता मानव सभ्यता नापा लिपा विशेष कथया हना देशाई वेक्लन धया दिगुदुसा। थोय भतौ दस गते रसुवाया भोटे कोशी खुसी जुसे वोगु कष्ट जागु खुसी भायता मुक प्राकृतिक विपत्ति जक मजुसे जलवायु अन्याय लिचो कथ क्याता विश्व स्तरे लिचो लाइ कथ कुत याना बिता सरकार नापा इनाफ याना दिल। सभापति लामिछाने खुसी बास लिचो लापी मनोते गु त या त सरकार विरुद्ध या त कुङखिनेगु लफु थेगु ज्या मजुस्या राज्यप्रति या अपेक्षा लिपाङ्गु गोहाली कथ थुइगेता इनाप्याना दिल। सभापति लामिछाने विपत्तिया इले नेपाली सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी स्थानीय प्रशासन जनप्रतिनिधि स्वास्थ्य कर्मी स्वयंसेवकको सकल मनुतेस कुबीगु भालायता चोछाया दिल। अथेना सीमा पार नापाङ्गु ख्याचो कथ विपत पूर्व सूचना प्रणाली विकास यायता हिमाली समुदाय जीवन जीविको उपार्जन ओ सुरक्षित भविष्य संरक्षण यायता जलवायु बिगु लब दैगु मदैगु विशेष अन्तर्राष्ट्रिय गुहाली सुनिश्चित याय मागुली बन बिया दिल। पुननिर्माण या नामे नेपाली जनता दथि अझ उपऋण तनिगु पला दिके मागु धासे अनुदान लिधंसा काइगु अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त छेले फैगु पाके नेपाया ध्यान हुने मागुली सुझ बिया दिल। सभापति लामिछाने राष्ट्र संज्ञा चे छकगु महासभा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलिया जलवायु सङ्कट हिमालय अवस्था विशेष हलिया समुदाय दथिया ध्यान कोसाले त इनाप्याना दिल। नेपाली कङ्ग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देवान नेपाया त जलवायु हुपा हाठ्या तापाकी मागु ध्या दिगुदु सचिव झिन्सोकगु
बिपी जयन्ती या लसत्या खोपे गोसागुगु विचार काला बिल ज्याचोले भोटे कोसी खुसीमा नेपा या ता गुब्ले फुले मुफैगु सास्ती बिगुली वैगु दुने थुज्याको हाठ्या तापाया फेमा धैगु अभियान ह्याके त बिया दिल भोटे कोसी खुसी बाया हुने तिगु चिलिमे जलविद्युत केन्द्र या सुरुङ च्याकेगु ज्या न्याका चङ्गुदु ज्या या झोले दुपे प्राविधिक कर्मचारी तेता माले ताव उदार्या नीति तिना तगु सुरुङ या फुवा हुइगु ज्या न्याका तगु दु चिलिमे जलविद्युत केन्द्र या केन्द्र प्रमुख मनिष विष्ट या कथा नेपाली सेना भारतीय सेना या ग्वाले सुरुङ दुने दोचिना चोङगु भेटे ना चिकेगु ज्या जोया सङ्गु दु मध्यकया कुतलिपा आतक 60 मिटर सुरुङ या ना फोहर चिकेगु ज्या जुगु जानकारी बिया दिल भोटे कोसी खुसीसँग विनाशकारी खुसी बान्तना चोपी मध्ये झिन्सोस ने निमस्या सिम लुयावोगु प्रहरिया थापुदु गुकी रसुवा सचियो नेच्यामा नुवाकोटे सचियो गुई नेमा थादिङे नेमा चितौने सोमा चितौने सोसौ खुई सोमा गोर्खा नेनेमा तनहुई सुइच्यामा नवलपरासी पूर्वे निस निन हेमा वो नवलपरासी पश्चिमे निस ओ नि निमा याना झिन सोस हे निमा स्यासिमा लुयावो गुख लुयावो पे सिमा ते गु मसिकया नीति डिएनए नमुना मुङ्के गु निसे मागु प्रक्रिया पुअङ्का आ झिन छस पी च्यामा सिमा चा कुए लाना सुरक्षित कथा व्यवस्थापन यागु दुसा सीमा मसिकेगु नीति सीमा सिया सीमा मसिकेगु नीति सिम हया झिन्निस व चे खुमा थ थिथि या झिन खुस व झिङखुमा याना मुक निदो गुस नि निगु डिएनए नमुना मुङ्कगु दुसा नापा मसिका मजुगु झिन्निस गुई न्यागु सिमसिया थल नेपाल प्रहरी वेबसाइट नापा अपलोड यागु दु आतक तना चोपी पेदोन हे नेमसी तामाले गुज्या न्याका तगु दु खुसीमा लिचो लागु लाग्या उद्धार राहत इनेगु सीमा व्यवस्थापन नापाया जाया नीति आतक ने दो गुस ने यामा प्रहरी छेगु दुसा थते या नाथिति जिल्ला तेके दुगु होल्डिङ सेन्टर एसोसो सुइमा मनोतेता तया तगु दु रसुआया भोटे कोसी खुसी वोङ्गु खुसी बाया हुने चिन या केरुङ नाका अलपत्र लापी खुस व नेमा नेपामी मनु ते त प्याची नक्सा उदारियागुदु नेपाल चिन सीमावर्ती सिन्धुपाल्चोक या तातोपानी नाका जुसे वेक पिन्ता स्वदेशे लित हगु सशस्त्र प्रहरी बल धागुदु नेपाल वायु सेवा निगममा खुसी बा व प्राकृतिक हाठ्या लिचो लापी मनु तेगु नीति छोया हैगु राहा जोलन ढुवानी तुइगु ढेबा लक्ष्या नीति छुट बिगु जुगुदु निगममा मिग छगु प्रेस विज्ञप्ति हाठ्या जापी मनु तेता गुहाली यागु आज राहा जोल ढुवानीके विशेष सहुलियत लल ह्यागु कोचिना गुधागु ख निगममा थगु संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कथा थो कोचिना जुगु धातिक गुदु निगम या कथा अन्तर्राष्ट्रिय स्टेसन स नेपालले खुसी बाया नीति छोया हैगु राहा जोलस निगम नापा स्वापु दुगु ढेबा लक्ष्य नीति छुट बिगु जुगु ख थो नापा विदेशी चुनाचो पी नेपाली थिथि संघ संस्था व ग्वाली मिनिका स नेपा छोयागु राहा जोल या ढुवानी अपुगु फलसा नापाका गुदु संघीय संसद निगु सदन या बैठक थौ चुने गुदु संघीय संसद सचिवालय कथम प्रतिनिधि सभा बैठक निनेसिया छताईले चुनी धासा राष्ट्रिय सभा बैठक थौ निने छता इजुए झिङ्या गुमिनेटे चुनी कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोभिता गौतम निको पक्ष च्याइगु बुइगु अवस्था क्या फेकेता मेलमिलाप नापाया विधेयक संशोधन या यता सनागु धेयादिगुदु प्रतिनिधि सभा मिगया बैठकले मेलमिलाप नपाया निकको संशोधन विधेयक 2083 दथि विषयमा धैगु प्रस्ताव दथि सैद्धान्तिक सहलसँग लुङ्गु नेसैली सभ्या दिसे वेक्ल मेलमिलाप उपोस अदालते मोमो जुइगुली थो विचायनागु ध्याया दिलस थो विधेयक दथि सहल सम्पत्ति कया दिपिन संसद त्यस स्थानीय तह या ग्वालीस सामुदायिक मेलमिलाप ज्या उपकेता विधेयक महत्व जाइगु तर बाध्यता लिदंसा मेलमिलाप मोजुइगु विचार पोङ्का दिगु ख प्रतिनिधि सभा बैठक एसियाली विधायकी संस्था तेगु परिषदीय सदस्यता कागु काकेगु नापाया प्रस्ताव दुत अभिगुदु सभा मिगया बैठक प्रस्ताव निभया दिशे कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोभिता गौतम परिषद एसियाली विधायकी संस्था दति कानून देके मागु विधायकी नीति कानूनी सूचना व कानून भिङ्केगु नापाया अनुभव काल बिल ग्वाली काल बिल या माध्यम कानूनी शासन कानूनी संस्कृति या प्रवर्धन यागु अन्तर सरकारी निकाय जुगु जानकारी बिया दिला
राष्ट्रिय सभा मिगे बैठकै प्रतिनिधि सभा सहसना नापा वगु नेपाल विशेष सेवा ऐन 2042 साविका व्यवस्था माकेगु नापाया विधेयक 2083 दथी समितीय प्रतिवेदन दूत अभिगुदु बैठकै विधान व्यवस्थापन समितीय सभापति कृष्ण बहादुर रोकाया प्रतिनिधि सभा सहसना नापा वगु विधेयक दथी दफा वार सलय प्रतिवेदन सभा नापा दूत ब्यादिगुख थुयानी राष्ट्र सभा बैठकै विशेष इले संसद भोटे कोशी खुशीबा नापा उदाहरण नीति वे फैगु विदेशी विज्ञ प्राविधिक पिन्त सरकार अनुमति मबिया मानवीय हाथ्या उपगुधका कुङ्खिना दिल प्रतिनिधि सभा कथा अर्थ समिति हिगा बैठक रसुवा खुसीबास अर्थतन्त्र लागू लिचो जलवायु वित्त नापाय अध्ययन विश्लेषण यान असो दुई गते तक सुझाव नापाय प्रतिवेदन दूत वित्त उपसमिति निसुङ्गुदु समिति सुझाव नापाय प्रतिवेदन नीति सांसद सुशील खड्काया समेत जगते नेहमा दुजिया उपसमिति निसुङ्गुख परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल नापा नेपाल नीति श्रीलङ्काली राजदूत रुवान्थी डेल्पिटिया नाप्लाना दिगुदु परराष्ट्र मन्त्रालय हिगो जुगु नाप्लाय ज्या वेक पिसा आयागु हाठ्या जागु खुसीबास लिचु लापी नेपाल नेपाली यता श्रीलङ्का सरकार या थासा झिगु लाख अमेरिकी डलर ग्वाली लल ह्यागु पोचिगुदु नेपाल टेलिकममा रसुवा दुगो बोटेकोसी खुसी स वोगु कष्ट स लिचोलापी मनो त्यता मालेगु उद्धारो पुनस्थापना नीति प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषे झिगु करोड देवा ग्वालियागु दु अथियाना थुया न्ह कर्मचारी तेगु पाखे निगु करोड निगु लाख नि खुदो खुई खुतका ढेवा चेक नापा अर्थमन्त्री या त ललाय धुङ्क गुदुसा अथियाना तनहु समाज युके खुसीबास लिचोलापी छेजयाता राहत पुनस्थापना नीति झिगु लाख निजी व आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सन काभ्रे शाखा सुई निगु लाख पी खुदो ढेवा प्रधानमन्त्री राहत कोषे ग्वालिया गुदु कपिल वस्तु तौली हवाई दुगु कालिका स्वावलम्बन सामाजिक केन्द्र छगु लाख ङेङ्यादो पर्सा बिरगन्जे दुगु शिवम बचत ऋण सहकारी संस्था निगुलाख ङे छदो प्रधानमन्त्री राहत कोषे धेवा दाखिला यागुदु जलाखला दे भारत सरकार भोटेकोसी खुसीसँग लिचो लागु लाग्या मागु कथया राहत व उद्धार जोल छोया हेगु ज्यान ह्याका तगुदु थो जोले मिग ये च्याकगु खुसिया राहत जोल नेपाले ठेङ्का हगुदु गुकी उद्धार उपकरण उद्धार जोल फरेन्सिक जोल सेनाया पुचयाता मागु जोल नापा सुई न्याकु टन राहत व उद्धार जोल कुबिगु भारतीय वायुसेनाया च्याकगु विमान ये ठेङ्का वगु ख नेपाल नीति भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवमा थो राहत जोल विज्ञान प्रविधि हो नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुन्याता लल हाना दिगुख उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी यादव उपभोक्ता ठेन्जाको कम्पनी या खाली ग्यास सिलिन्डर हसाना ग्यास जायाका लल हाना बिता नेपाल आयल निगम या त उजौँ ब्यादिगुदु प्रतिनिधि सभा कथया उद्योग तथा वाणिज्य व श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति मेघ चङ्गु बैठकै मन्त्री यादव थो उज उल्लङ्घन यासा ह्याना चोङको कानुन कथा कारवाही आएको ख्यासो नापा ब्यादिगुदु आदेश पिनाया बुख इरान या सिरिक लाग्या क्षेपास्त्र के कगु तटीय लाग्या थिथि थासे विस्फोट या स त्या दुगु इरानी सरकारी सञ्चार माध्यम त्यसन थागुदु मिनाप काउन्टी व केसम टापु या लाग्या न विस्फोट या स त्या दुगु धागुदु थोएदेथि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प याना चोङ्गु ल्वापु अमेरिका जुइगु नोभेम्बर या मध्यावधि निर्वाचन लिपा थथेन हनीगु दाबी नापा याना दिगुदु छ वेक्ल युद्ध न्याकेगु नापा चिकै या मु जुइगु अनुमान नापा याना दिगुदु आ मौसमीय जानकारी थौ कोशी बागमती गण्डकी लुम्बिनी प्रदेश हिमाली हो तराई लागया छुन थासे व कर्णाली सुदूर पश्चिम प्रदेश हिमाली हो तराई लागया मो थासे कोशी बागमती गण्डकी लुम्बिनी व कर्णाली प्रदेश पहाडी लगाए यको थासे व सुदूर पश्चिम प्रदेश पहाडी लगाए छुन थासे मलनापा लाप्सा तोया मध्यम टकया वाविगु सम्भावना कुबिगुदु कोशी बागमती गण्डकी लुम्बिनी प्रदेश पहाडी हो मधेस प्रदेश नापा बागमती गण्डकी लुम्बिनी प्रदेश तराई लगाए छगु निगु थासे आप्लङ वाविगु सम्भावना कुबिगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग या थापुदु वङ्गु निपे घौ दुने ये सोनी गया क्वाज नि च्यागु फुटिन हेगु डिग्री सेल्सियस जति लुगु खस थौन हिने ये सोनी गया क्वाज निन हेगु निसे नि गुगु डिग्री सेल्सियस जति चोनीगु दुकुमा दु थौ सुथे ये सोनी गले न्याता इजु या पिगु मिनेटे लुया व गु निभा सोनी ल खुता इजु या निगु मिनेटे बि रेडियो नेपाल नेपाल भाषा समाचार पुवन चिताइले नेपाली भाषा समाचार निना दिस सुभा

दिलारिम लेङ्गे टिभी सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपालकी एफएम ब्यान्ड तिवा 98.1 से 103 मेगा हर्समा सेनाङ थुप्की सिसी रेडियो नेपालकी फेसबुक पेज रेडियो नेपालकी वेबसाइट www.radionepal.gov.np तेजेन रेडियो नेपालकी अनलाइन पोर्टल www.radionepalonline.com दङ दिलारिमकी फेसबुक पेज सेरविके शेरवा टिभी घोषी सिरु पेज तेमासङ जम्मुलिङकी चुकै दासला जुन वसेना दिल्लारिमला सर्वी चिचोक नङला जुने छगलाने फेन्सेटप नङ्गुपको छप्तिवा चिचोक नङला सब्जु बुलुप्तिवा सर्वी चिचोक नङ्गे छप्सित गोठेतिवा लामा खेनपतिवा सर्वी स्वर्गित पातिवा तङ सखुल्ना छोक्ला छगलाने फेन्सेटप नङ्गिन जुन गोतोप सेर्वा अचुनोप इजुनोम तिवाला फेप्सुने आरवुडो किरुप्तङ कोर्ना छुकी कोला लेन खाक्सेन पोतिवा ख्याफेलखी फन्वा आरिङ रङ्गे रक चेतोफ खप्तेकी जम्बलिङ तुच्छेन याङना विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस वर्ल्ड सुसाइड प्रिभेन्सन डेसँग यन आरिङकी दिल्लारिमलाती दितुछेनकी कोला तङ याम्बा लेन्तिवी कोला ख्यान्थोक तेरोपतङ पार पार्ला शेर्वी लुतिवा तोङ्गोफ टिक्यान वतोपतपकी ल्यारिम तिङसोक सेक सेनोनाङ सिने लेङ्गेतिवा तेरिला सोभियन

lasi tanda lhenge tiwi senangin wa radio nepal ne tongin wa sherwi doluki larim dilarim nariki jofuri charmo sherwi keki sangyor sinsima sujo jitang kama chenga tema gelkap tang jambuling ki chukui dasala jun gosinang senang thupke आरिङ जम्बुलिङ आत्महत्या रोकथाम तुसेन वर्ल्ड सुसाइड प्रिभेन्सन डे ग्यालखप्ला तेराङ मिदे जम्बुलिङला फ्रक चेतोपमिला लाभ सताङला गुवा तोङ्गो कि सेमदो खेलसिङ मितिवाताङ क्यान ताम्य लोपको कि रङ्गी सेमला स्वरूप नासम तिवी कोला चिप्ला यिछे कि थोपु मितिवी मुला तेने ताम्य खिगो कि सि ल्यारिम तिवा नाछोप कोरी क्याने दि तुछे नारिङ चिङ्वे दितु छेन सिरुप्ती रोक चेतो कोला ख्यान्तोक तेरुप तुछेन तिरङ मिन्दे मिला मिकी मिजी चोकी फेन्छेन पोवा सिने ठेन्सो किरुप सेमदुक्ला कलेला खेल्नी वतुप मितिवी तम्ये तिवा ङेन्दु तङ मिमेरा छिकी रङ्गी रोक चेतोप ग्याब्ला ती मिचिकी नासम कि जोसा लिन्सिङ तिरा मिन्दे नासम चिकी जोसा लिन्सिङ तिरा मिकी रोक चेतोप मिन्दे याम्बा खोङकी खाङबा खाङबिने ताङदिवा चुकिवा चिचोक ताङ ग्यालखाप कि जोसा लिन्सिसाङ मिकी रङ्गी रोक्छे कि ती कोर तिबी कोला ख्यान्तोक तेरुप तुछेन कि सिलासाङ आरिङ दि रोक चेतोप नेताङ न्युङमो जप ताङ मेता जप कोर्की तुछेन च्याप हेर्न दाकुया सिरुजा मिकी ए मेरा चिकी कति खाङ नासम ताङ हिन्तुकु पारे खाङ हिन्तुकै खाङिन नासम मेलवा तोङ मिसिने दाकुई सिकिरुजा सिरुपजा क्यासेनाङ तिकि ग्याप्ला ला फिङसिङ तिकि तिङला ला फिङसिङ तिमीला चो तिकि दुख पावते चुक्याने मिकी रोक्छे कि ती रोक्छे तोप नेताङ न्युङमो जब्ला दाक्पी कि काङ काङ कि थोप कि दाक्पी चुक्याने मेतीवाला रोक्रम कि थोप कि सिने कोरोना सुकी कोला लेन ख्याफेल कि तो मिगुल्स कि सङ दियारिङ जम्बुलिङला तितो छिर्न चाहिँ वतोपिन मेकी रोक्छे नक्सिरोप लेन्तिवा तन्दा चिचोक नङ्ला मङ्बु सिन मङ्बु फरि वतोप लेन्तिवा दाक्पी हाको कि त जम्बुलिङ ठोटेन छोक्पा याङना डब्लुएचओ कि सेतोप नाङसी नाङ तिकी थो नाङसिन जम्बुलिङला ती जम्बुलिङकी दासा तेरी त ग्यालखप तेरी क्याने लोचिकला ती मिमेरा पुमो दिन्ताङ तोङ निसु चोइ मितिवेकी रङ्गी रोक्छे कि सिने ती थोती सङ ख्याफेल छुङ्गुवा तुरङ क्याने त निमा चिक्ला त सेकेन्ड सिप्जु नङला ती मेरा चिकी सेकेन्ड सिप्जु याङना 40 सेकेन्डला ती मिमेरा चिकी रङ्गी रोक्छे कि सिनेसङ जम्बुलिङ ठोतेन छोकपेकी लेने ख्याफेल ख्यान वा जम्बुलिङ ठोतेन कि ख्याफेल क्या हो थो नाङसिन ती तुगी वा तुग्रङ क्याने त मिनेट जिल्ला मेरा चिकी रङ्गी रोक चेकी सिने तुगु नासम तुङ्गु तमा मेरा चिकी ती 40 सेकेन्डला ती रङ्गी रोक चेतोप रोक चेनी मि नासा डप थोती जम्बुलिङ ठोतेन छोकपेकी ख्याफेल ख्यान वा जम्बुलिङ जम्बुलिङला तुरङ केने तन्दा यम्बुलासङ दाक्पी यम्बु ग्यालखप्लासङ मितिवि रोक चेतोप नेताङ फरि वा तिनाङला ती तेरिसिनाङ लाग्पा वरङ्कि दाक्पी कोसी प्रदेशला ती तेरिसिनाङ लाग्पा मितिविकि रोक चेकि सिने यम्बि कोर्सोङ माक्मिकि थोला ख्याफेल क्यान वा तन्दा यम्बुला पल्जोलो नितोङ गेचु ताङ गेचुग्या चिक्ला ती मिमेरा तोङ दिन सै नितङ मेरा निसु सुमकी रङ्गी रोक्चेनी रोक्चेनी मितोइती नासा गङ्वा सिने थोला ख्याफेल ख्यान ग्वा मितिवी नम्ला रानी छिनङला छमर गेमनी म्यान्तिवा सोनी रङ्गी रोक्चेतोप्ती दिसेम दुखी नेताङ खाङबा चिकि काले तिरङ मिदि चिचोकताङ ग्यालखप जमुलिङकी काले यिन मि रङ्गी रोक्चेतोप तिङला कोर चिग्राङ थिनी मेङ्गी ती ग्याब्ला मि सेमला कले खेलसिङ रङ्गी तम्यतिवा सिसङ माङ्यनसिङ राङ चिक्लङ वा सिने तुछो रिङ्गु ने जुन नासम ताङने देनी खाङबि मि ताङ क्यान थम्बोसोनी खाङबि मेकी रङ्गी तम्यतिवा खाङ माङ्यनसिङ पजुर ने ताङ ल्यामो मेसिङ चिचोक्ला मितिवी दुक्पा बिनसिङ ताङ राङला सरु कले छुङने मिजी सिरुप्ती सरु फेन्सेन पोवा मि मिजिला दुक्पा किर्मो सिरुप्ती हुङ्गी डि सिरुप तम्यतिवा नासम तोङमाखे तुगै नासम तोङ्गुला कले छुङने नासम ल्यामो लोक तोङ्गुब्ला कले खेल्ने तुगै कोर्ना सुकी जोसालिन्छ मिकी रङ्गी रोक्चेकी तितपकि दक्पी कोर चिग्रङला तिरङ लानी ए तिला खाङ दोपा मेता क्यानसाङ तुगै क्यानो खिताङ मेतोप तिला गएर कि दल्जा क्याने रङ वजा खाङबा पेजा वजा हावा हामी कोला नासम मोतुङी खाङ हिन्दुकुई
खङ इन्तुगुई सिनी मिला खातुङ्गु मेङी फिला चोरङ ल्यामो चिङे थुङसिनाङ ल्यामो चिङे दाक्पी थुङसिनाङ मिकी सेमकी नाङला खङ वाय सेमकी नाङला चुकुई दुङ्गल वाय सिनी दाक्पी मिकी सेमकी नाङला सुनि लामो थोपकी तितापकी रोक्चेतु मितिवाला रोक्चेतुप नासम तङनी वोतुप मितिवाला दाक्पी खाङथेप सिरुप मेङ्गे तुकुई नासम दिवा तन्दा पो याम्बा मेकी ताङ्गो सिसिङ चाल दाक्पीसङ तोङ थोपकी तितापकी तुकुई नासम दिवा मोतोङ्गोब्ला दाक्पी खाङखाङ कि थोपकी सिनीसङ ति तुछेन आरिङकी तुछेन जम्बुलिङला च्याफिन फिला वोतुप दुक्पायाङ मेके थोङ्गोजा को सुगेप सिंह जु सुगेप सिंह जुला नजागेप सिंह यांग ए फो मेन मेन खांगला डोगो की मेन सगो की मेन पाला छेदेन गो की सिरुजा मितिवी संग फिला थोंगो कले तिवी को लायंग दालजा की रुजा तमसिम की दुंगल सिमला दुक्पा खेल सिंह सिम ना सिंह दकपु खांग की सी की दकपुला ए छुंगला सिम नानोक सिमला दुक्पा खेल नोक फो मेन पाते दों सी की दकपुला सी सिके दाकपुला दालजा कि तिपाला तिपाला याङ सि साङ मल मल छ्युङला खाङ क्यासुङ छ्युङला खाङ क्यासुङ सिनी सि साङ मिठिगु थिवा तिवा मिठिउ मेचिप्ला गल्नी ङु सिङ ए माङुपा खाङुइ खाङ क्यासुङ छ्युङला खाङुइ दुगुइ तम यालाङ छिलङुइ सिनी माङ माङु माङु सिनी ङु साङ मिजु ङप सिरुप्ति मिचुर तोङ्गुप्ति रङ मेदे सेमकी नासम फिला देन्दु सेमकी दुङ्गल तेन तोङ्गु सि सङ यिन तितापकी दाक्पी मितिवा ङप ङप मितिवा थोङसिङ ए माङु खाङु खिउनु चिलाङुइ सिनी सिरुप मेङ्गी दाक्पी खोङतिवाला कोले कोले क्यानी चुक क्यानी हिन्सिनाङ खोङतिवा चुक क्यानी वा तुग्रङ क्यानी ङुजिगो कि तुक्यानी मिचिग्रङ देनी कोठाला चिग्रङ देनी खाङबा चिग्रङ देनी ङुनी सिसिनाङ मि याम्बा मि चाला गल्ने ङुसिङ मितिवी पाला ङुसिङ रङ्गी सेमके दुङ्गल तिवा गरी फिलाटी रङ्गी सेम मेलाक्पा नासम मेलाक्पा तिवा गरी फिला थेन्टिनी सिने ख्यापा तिवीसँग सुङ भए तितापकी मितिवा ङुसिङ फो मिङुइ वसिङ ए माङु चिलाङुइ खाङक्यासुङ तुगै ङप मेङी सिने दाक्पीकी तुगै सुङ्गु मेङी सिने लेङ्गे तिवा तेरिला सपिन सेम नानी वतुप मेला ख्युङला खाङक्यासुङ थाङबोरङ वे सिनी तम्ये छिक चिक्रङ टिसिनाङ सेम ह्याङ्गा टि सिने ख्यापातिविसङ सुङ वे तम्ये सेमला रङ जोगो मिला सिनाङ रङ्गी सेमला सरु नासम्म तम्ये सेमके दुङ्गल तिवा याम्बा मिला सिरुप मितिवि सेम ह्याङ्गा गि सेमके दुङ्गल अला मङ्बु मेङ्गी सिने खोङतिवाला सेमके दुङ्गल अला मङ्बु मेङ्गी सिने ख्यापातिवि सुङ वे तितपकी यिन्जिक मेन्जिक रङ्गी चिपकी मितिवि मुला तेने सेमकी नासमकी कोला दाकु तिरी कि तम्याकी गोकी

लसो फ्याफुल्ला तिनी मन्जुश्री सम्मत 2862 तालु एन्दे लाला छेपाङी चुइसेकु विक्रम सम्म 2083 साल भदौ लाला छेपाङी चुइसिङ्हा नारे बिहिबार चु रेडियो नेपाल हिन्न तामाङ साङ्गुरी राङ्द डेनमुला गा सूर्य मोक्तान ठिम न्यायाधीन संसदीय मामिला ब्लुन सोभिता गौतम सही ठिम्री स्पष्ट आरेप बेरन ताम्द ड्याङबारी सरकार से बाङ्ला बन खाप मुला विशेष संक्षेप मुला प्रतिनिधि सभालाई ठिम न्यायाधीन मिलुइपो समितिलाई तिनी टिपेपछि साङ्गरी लेङ्मा थान्सुबान ब्लुन गौतम से ठिम खाङसे लाभा फैसला कार्यान्वयन लाभा दुईरी तिलाई समस्याका देखाबा से ठिम सोचिन्ता छैनन् थेराङमा समस्या त छाङ्न लाबारी बाङ्ला बन खाप मुला विषय सुङ्सु बहिन्न ब्लुन गौतम से फैसला कार्यान्वयन दा चुस्त दुरुस्त सुबारी सरकार से दन्दे गम्भीरता से गे लाबन खाबा से युल्दा तोब ठिम सुबारी समिति से अध्ययन लाबन मुला विषय सुङ्सु बमुला ब्लुन गौतम से ठिम खाङसे फैसला लासे चेकेन आता बसे थेला प्रभावकारी कार्यान्वयन लाबारी बाङ्ला दोबा तसे दिन मुला बिसिनन् सुङ्सु बमुला प्रतिनिधि सभालाई तिनीलाई चाहिँ साङ्री सांसद गते से भाल से ब्योङ लापाका दिँदा माइबा गे प्रभावकारी सोधोबा टाङ्गा आरेना अस्पताललाई गे ट्रिकोला नादोबा युल्बादा अभाव थिएन महँगी ताना लाबारी आतबा रङमा समसामयिक ताम्री सरकारलाई ध्यान छङ्न लापामुला सांसद गते से चुनन भदौलालाई चुई कुनु भोटे कोसी गान्धी रेखामा भालले परतासे माबा मिला दिन्थे मेका देशे अझै नुन डाङ्ला मि एसी खाबा आसला सिटीबासे यो न मिबा यो न माइबारी खाम्बालासे प्रभावकारी गेलाबारी माग मुला सांसद गते से भाल से ताना लाभ क्षति लामन ग्रेन मुसाइन भाल डी पर तसी मा बका देता माई से पिनमारी सरकार से सियान उपकरण संयंत्र प्रविधि थे हिलबांग परिचालन लाभरीन माग लाभ मुला राष्ट्रिय सभालाई तिनीटिपछि साङसे नेपाल विशेष सेवा ऐन 2042 गाछला ठिम तेनमा सम्बन्धीलाई विधेयक 2083 सर्वसम्मति से पारित लापमला काइब्लोन बालेन्द्र शाहला तर्फ ग्याम ठिम न्यायाधीन संसदीय मामिला ब्लोन सविता गौतम से थान्सुबा विधान व्यवस्थापन समितिलाई प्रतिवेदनलाई छ्याम्रे प्रतिनिधि सभा ग्याम साङ्गुला छ्याम्रे खापा नेपाल विशेष सेवा ऐन 2042 गाछला ठिम तेनमा सम्बन्धीलाई विधेयक सवारी सर्वसम्मति से पारित लाभिन्न चुनाव लसी तिनीलाई साङ्री काइब्लोन शाहला तर्फ ग्याम ठिम्ब्लोन गौतम से राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई नोर्दिङ 2081 थेन 2081-82 दिङ्गीकलाई प्रतिवेदन सवारी थान्छु बम्बुबा राष्ट्रिय सभालाई अर्को चिसाङ चुनन भदौलालाई सोमचुइसे गी कुनु दिनेरी टिसेला तापमुला ग्रीन प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसलाई छ्याम्री विपक्षी दलका देशै राष्ट्रिय विपत्तिलाई दुईरी स्यान दलका दे सरकार थिएन छ्याम्नन् मुला विषय पाङ्बा मुला काङ्ग्रेस संसदीय दललाई गेदिम्री तिनी प्रतिनिधि सभारी गुबाङलाबा विपक्षी दलका देला चिसाङसे भोटेकोसी गान्धेरी खापा भालले परतसी महाबादा माइबा उद्धार लाभा थिएन राहत बोलाबारी दान्दे दोन सरकार से लाबान खापा गेदा थुजे छ धुनमान तिलाई कमी कमजोरीका दे तसाम सच्याब लाबारी सरकार दा सुझाव पिन्बा मुला चिसाङसे भाल प्रभावित हिलबाला उद्धार लबरी थिएन राहत बोलाबाला छ्याम्रे दिम्नाम आरे बगा दिँदा योनबीमा योना अस्थायी पुनर्स्थापना लाबा गे लबारी सरकार दा सुझाव पिनमान सरकारलाई अभियान दा विपक्षी दल चाहिँ रोलाबा निर्णय लाभ मुला ची साङ्री काङ्ग्रेस एमाले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी थिएन श्रम संस्कृति पार्टीलाई संसदीय दललाई दान पका देशे बोकिन बामुबा प्रतिनिधि सभालाई सानाम थिएन प्राकृतिक स्रोत समितिलाई चिसाङ्री सांसद गदेशे जलवायु पोल चुनौती थिएन सङ्कट त छाङ्न लाबारी मुख्युल थिएन डिक्से गेलाबारी खाम्दोला विषय सुङ्ग मुला समितिलाई तिन रिटिप चिसाङ्री सांसद गदेशे भोटेकोसी थिएन त्रिशुली गान्धेरी खापा भालसे सानाम थिएन प्राकृतिक स्रोत रे लामा ग्रेन क्षेत्री ताना लाबासे गान्धी थिएन ज्योमो सोना लाबा ताम्रे मुख्युल थिएन डिक्से गेलाबारी खाम्दोला विषय सुङ्ग हिन्न विपद लिच्छला वातावरणीय पुनर्स्थापनालाई छ्याम्रे मुख्युल्ला डाजाङ्री जलवायु न्याय थिएन क्षतिपूर्तिलाई ताम थिए बारिन सांसद गदेशे सुङ्ग मुला चिसाङ्री वातावरण खेन्पो गदेशे नेपालले विपद दिशा सानाम थुम्रे निर्भर मोबा थिएन विपदलाई जोखिम छाङ्न लाबारी खाम्बा क्षमतालाई आधार रे क्षतिपूर्ति थिएन पुनर्स्थापना लाबारी लगानी लाबारी खाम्दोला विषय सुङ्ग मुला खेन्पो गदेशे सानाम थुम विपद थिम थिएन जलवायु थुम्री ताबा टाङ्गासे विपद जोखिम द च्याङ्न लाबारी खाम्बा गेदा प्राथमिकता पिनमारी सुझाव पिनबा मुला
लुइथेन चाबासे स्वच्छता ब्लुन निशा मेहता सय विपतला दुहेरी लामा मि तिरेमान सीमा शिवमिला लुइरोद थानबारी खाम्बाला से सब गृह शोभा योजना शोभा मला बेसे सुङसिप मला ब्लुन मेहता सय विपतला दुहेरी लामान शिव लुइरोदा थानबारी आखाम्बा सय लिछाला दुहेरी भोटेकोसी गान्धेरी खाबा भाले परप्त शिव गादेला लुइरो थानबारी लामान गारो ताबासे अस्पताल सब गृह शोभारी योजना शोभा मला बेसे सुङसिप हिन्ना ब्लुन मेहता से फरेन्सिक मेडिसिनला महत्व लेबन खाबसे मेडिको लिगल सम्बन्धीलाई गेदा प्रभावकारी सोभारी सब गृहलाई क्षमता लिन लदोबा मराङमा चाहिँ युल्बा गोल लोलो लोलो गोर्चुसेङी सङ्घीय अस्पताल थिएन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले बेनन अस्पताल डी च्याङनारी गोरङाचुई शिवलुइरो थानबारी खाम्बा सब गृह सोभारी बाङ्लादोजला मुला विषय सुङसुबा हिना कोसे अस्पताल नारायणी अस्पताल गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल भरतपुर अस्पताल भेरी अस्पताल थिएन डडेलधुरा अस्पताल रि सब गृह सोभारी प्रक्रिया तेब मुला विषयन ब्लोन मेहता चाहिँ सुङसुबा मुला काइब्लोन दैवी प्रकोप उद्धार कोश्री दान्देतोनामा अर्बचुइसे घि करोड ब्लिचुइसे सोम लाख सोमचुइसे सोम तोङचुइसे सिका ब्लिचुइसे गेक जम्मा थापमला काइब्लोन थे ब्लोन सेङजाङ गेदिमला अनुसार तिनी छोरी पिनमा विवरण से कुगोर कु बैग्री जम्मा तबा नेपाली थिएन अमेरिकी डलर लसे कोश्री अर्बचुइसे घि करोड ब्लिचुइसे सोम लाख सोमचुइसे सोम तोङचुइसे सिका ब्लिचुइसे गेक टाङ्गा जम्मा थापा हिना चुनुन गुङ्ग्री मनी से रसुवाला भोटेकोसी गन्दी रेखामा भाल पीडित राहत बोलाबारी उद्धार लाबारी थिएन पुनर्स्थापना लाबारी ब्रे मिलियन युरो अर्थात् अर्ब गिक करोड ब्लिचुइसे गिक लाख निश्चुइसे कुसे तोङ निचुइ टाङ्गा रोला बमला मुस्ताङ जोङरी चुनन भदौलाला सोमचुइ थिएन सोमचुइसे गिक कुनु सेङसेला घर पोझङ जलवायु पोइ फाल 2000 तयारीला 2083 तयारी थुम्ब मला मुख्युल सेन चासो थान्सिटीमा जलवायु पोला प्रभाव से ह्याङला ह्युल्बा तानाला बा असरला ताम्री बेनालन साझा अवधारणा सोभारी घर पोजुङ गाउँपालिका से जलवायु हाल सेङबारी तयारी लाभ हिन्ना पिङ ग्यास उत्सर्जन तामा जलवायु पोसे जमुलिङ खोर्री तापक्रम लेबासे नेपाल जुमु पहाड थेन तराईला जोङसे नादोबा जलवायु सङ्कट थेन थेला व्यवस्थापन लाभ ताम्री चुहालडी काठुइला सल ताप मुला जलवायु पोला असर से नेपाल तानालाबा क्षति थिएन खाबारी तानालाबारी खाम्बा जोखिमला ताम्री युल थिएन मोक्युल्ला ध्यान छेङनालाबारी वाल सिङ्गेलाबा हिन्न विषय गाउँपालिकालाई ग्रेन प्रशासकीय अधिकृत भीम कुमार बस्ने से सुङ्बा हिन्ना नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई थुतबोन थिएन गाछाला काइब्रोन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड से जलवायु पोला ताम्दा मुख्युल्ला डाजाङ्री थिबारी खाम्दल विषय सङ्क्षेप मला पार्टीलाई गेखोरी बोकिनमारी तिनी जनकपुर धाम्रे दोबा थुतबोन दाहाल से जलवायु पोसे ज्योमो ह्युबा ताम वातावरणलाई चेकेनातना मिलुइ सभ्यता थिएन अस्तित्व रि थुइ सिकाब ताम ताबसे नेपाल से चुदा मुख्युल्ला डाजाङ्री थिबारी खाम्दल विषय सङ्क्षेप हिन्ना रसुवा जुङला गोसाइकुण्ड गाउँपालिकालाई चोहो कैसाङ नुर्पु तामाङ से गाउँपालिका ग्याम दान्दे दान्देनुन ग्यार्जाङा से मेन्दो ब्लिची से घामी माप मुला विशेष सुङ्ब मुला चोहो तामाङलाई अनुसार गोसाइकुण्ड गाउँपालिकालाई गेदिम नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत लुफखाङ टिमुरे थिएन च्याप्रोबेसी स्वास्थ्य चौकीलाई गेदिम थिएन ब्रिबडोबा लुप्पान लामान लुफखाङ गदे ब्योङ्न लाप मुला गाउँपालिकालाई प्रशासनिक गे दान्दे जुङला ग्याल्सा ग्याम सेङसिटिभ मुला भाले परप्तासी गाउँपालिकालाई रोचो हो मेन्दुङी ओडाचो हो थिएन मेन्दो सोम ओडालाई मुल्मे गर्दै मासिटिभ मुला गाउँपालिकालाई भाल प्रभावित गरिदिँदा याम्बरी बुबा येलो थिएन मुस्ताङ घोनबरी दान्दे अस्थायी टेबा ग्लास होसे थान्बा मुला पृथ्वी राजमार्गलाई कृष्ण बिहारी नोङबा सडक ग्याम चुनन भदौ लान्नाङरी सोसी सवारी साधन सेङबारी खाम्बाला से सरकार से गेलाबन मुला विषय पाङबा मुला काइब्लोन बारेन्द्र साहसे चुनन भदौलालाई चिसेङ निस्कुनु प्रतिनिधि सवारी सुङबा अनुसार चुनन भदौला थुम्बा दुई दोनामा ग्याम सोसी सवारी साधन सेङबारी खाम्बाला से दान्दे गेलाबन मुला कृष्ण बिहारी ब्राथासी छुवाछु ग्यार्जङ इसे गाँचुई मिटर छार ट्र्याक ठ्वाङसी गोर्चुई मेसिन थिएन मेन्दो सोमचुई कर्मचारी से गेला बनमुला उसेम उद्योग वाणिज्य थिएन आपूर्ति ब्लोन गौरी कुमारी यादव से ब्लोनलाई दान घ्याम तिनी राजीनामा दोन्छु बमला ब्लोन यादवलाई लोनखाङ सिपाङबा अनुसार ब्लोन यादव से काइब्लोन बालेन्द्र साहदा राजीनामा दोन्छु बहिन्ना चुनन साङ्गुर गदेला छ्याम्रे तिनी त तामाङ साङ्गुर जेन्जी रेडियो नेपाल ज्ञान मन लसुगु लसो फ्याफुल्ला

यी सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दिवास ठिक विजय झाचा सुनल झा मैथिली भाषामा समाचार। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल आवाबला आसिन 6 गते सलाह 10 गते धेर संयुक्त राष्ट्रसंघकी 81 महासभामा सहभागिता जनाउँथ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदकै कार्यालय सिंहदरबारमा आई बैसल मन्त्री परिषदकै बैठक छ। प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वमा सहभागी होवाला नेपाली प्रतिनिधिमण्डलकै भ्रमण स्वीकृत गर्वाक निर्णय केने सरकारकै प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलकै जानकारी दिलिन्। बैठक छ भारतकै नयाँ दिल्लीमा आयोजना होवाला नेपाल भारत अन्तर सरकारी उप समितिकै बैठकमा सहभागी होवाक नेपाली वार्ता टोली गठन गर्वाक निर्णय सेहो ऐना बैठक सँ अनुचित लेनदेन मीटर ब्याज अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा करबाक लेल सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान कयलक अछि। भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै प्रस्तावमे काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर सप्तरी या दाङ जिल्लाके 27 स्थानीय तहके 17,438 गरीब घर परिवारके सूची स्वीकृत करबाक निर्णय भेल मन्त्री पोखरेल जानकारी दिलिन्। मन्त्री परिषद सँ शिक्षा सेवा आयोगकै अध्यक्षमे भक्तपुरकै डाक्टर हरि प्रसाद लम्साल तथा सदस्यमे मकवानपुरकै रामशरण सापकोटा, महिला सदस्यमे काठमाडौँकै विष्णु घिमिरे रिमालके नियुक्त गर्बाक निर्णय कयलक अछि। ऐनाका बैठक सँ सचिव विनोद बहादुर कुँवरकै राजपत्राङ्कृत विशिष्ट श्रेणीकै सचिव पदमे, बढुवाका लुम्बिनी प्रदेशकै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदकै कार्यालयकै प्रमुख सचिवमे पदस्थापन गर्बाक निर्णय कयलक अछि। ऐना सचिव उत्तर कुमार खत्रीकै सेहो सचिव पदमे, बढुवा कका सुदूरपश्चिम प्रदेशकै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदकै कार्यालयकै प्रमुख सचिवमे पदस्थापन गर्बाक निर्णय केने प्रवक्ता पोखरेल जानकारी दिलिन्। सांसद सब प्राकृतिक विपद सँ भऽ सकबाक जनधन के क्षति न्यूनीकरण के योजना बनाब तथा नदी प्रणाली में आधारित विकास के अवधारणा के पुनर्विचार करबाक लेल सरकार की ध्यानाकर्षण करौलनि अछि। प्रतिनिधि सभा के आजुक बैठक के शून्य समय में सांसद सुशील खड़का नदी प्रणाली में आधारित बस्ती जलवायु परिवर्तन पश्चात उच्च जोखिम में पड़ल जनबित आ विकास के मॉडल पुनर्विचार करबाक चाही पर जोर दिलन। स्मृति सेंचुरी उच्च जोखिम में रहल दोलखा स्थित छो रोल्पा हिमताल के 24 घंटा निगरानी करबाक लेल आ तटीय क्षेत्र के निगरानी के जीव धन के रक्षा करबाक लेल स्वचालित सायरन प्रणाली जोड़ सरकार के सुझाव दिलन। सांसद श्री राम न्योपानी, सांसद सुषमा स्वर्णकार, सांसद सोम शर्मा, सांसद हरिप्रसाद भूषाल, सांसद सुलभ खरेल, सांसद हरिमोहन भंडारी, सांसद सुशीला ढकाल आचार्य, सांसद ज्ञानु पौड्याल, सांसद विपिन कुमार आचार्य, सांसद समीक्षा बास्कोटा, सांसद सब ललिता कुमारी, लक्ष्मी पौडेल, विक्रम थापा, विष्णुमाया बिक, शम्भुप्रसाद ढकाल, शाहनाज खातुन, शोभा खनाल, श्रद्धा कुमार छेत्री, सरस्वती लामा, सरिता महतो, सागर भूषाल, साजिदा खातुन सिद्दिकी, सृजना श्रेष्ठ लगायत होटेकोशी बाढ़ में हरा रहल नागरिक के खोजी में संपूर्ण संयंत्र परिचालन करबाक लेल सरकार सँग माग कयलनि। राष्ट्रसभा सँ नेपाल विशेष सेवा ऐन 2042 के साबिक के व्यवस्था जगेबाक सम्बन्धी विधेयक 2083 सर्वसम्मति सँ पारित भेल अछि। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह के दिस सँ कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सुभिता गौतम प्रस्तुत केने विधान व्यवस्थापन समिति के प्रतिवेदन सहित प्रतिनिधि सभा सँ सन्देश सहित प्राप्त नेपाल विशेष सेवा ऐन 2042 के साबिक के व्यवस्था जगेबाक सम्बन्धी विधेयक सभा सर्वसम्मति सँ पारित कयलक अछि। राष्ट्रसभा के दोसर बैठक 31 गते बुध दिन सभा 1 बजे बैसत। सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री में दीपक कुमार शाह के सिफारिश कयलक अछि। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह राष्ट्रपति समक्ष उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री में नियुक्त करबाक लेल हुनका सिफारिश केने प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय जनौलक अछि। शाह के मंत्री पद में आईए शपथ करबाक कार्यक्रम रहल जनायल गेल अछि। रसुआ बाढ़ सँ क्षतिग्रस्त पूर्वाधार के पुनर्निर्माण तथा दीर्घकालीन एकीकृत विकास में संयुक्त राष्ट्र संघीय परियोजना सेवा कार्यालय UNOPS प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध करेबाक प्रतिबद्धता जनौलक अछि। पूर्वाधार विकास मंत्री सुनील लम्साल आ UNOPS के एशिया तथा प्रशांत के निर्देशक सारा नेटरविज आई मंत्रालय में भेल भेंटवार्ता में रसुआ में बाढ़ पश्चात के कृत पुनर्निर्माण तथा पूर्वाधार विकास के विषय में विचार विमर्श भेल अछि। भेंट में मंत्री लम्साल भादो 10 गति के बाढ़ से पूर्वाधार क्षेत्र में अधिक क्षति पहुंचल जानकारी दैत क्षतिग्रस्त संरचना के पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण के लेल मंत्रालय सहित सरकार के संपूर्ण संयंत्र अहोरात्र परिचालित रहल
बतौलनि। मंत्री लमसाल जलवायु परिवर्तन के असर के केन्द्र में राखिकर विकास निर्माण के योजना आगू बढ़ा रहल चर्च करत क्षतिग्रस्त त्रिशूली लगाय क्षेत्र में एकीकृत विकास योजना अंतर्गत खाने पानी अस्थायी आवास तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधार निर्माण के काज की प्राथमिकता के साथ आगू बढ़ायल गेल बतौलनि। UNOPS के क्षेत्रीय निर्देशक नेटजर नेपाल के दीर्घकालीन तथा एकीकृत विकास के लिए संस्थागत सहयोग उपलब्ध करेबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। वो UNOPS के अंतर्राष्ट्रीय अनुभव तथा प्राविधिक विशेषज्ञता के नेपाल के पुनर्निर्माण योजना संग जोड़े टिकाऊ विकास के लिए उपलब्ध वैदेशिक सहायता एकीकृत रूप में परिचालन करबाक लेल प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग करबाक बतौलनि। 3 वर्षीय गरिमा चौधरी के बलात्कार पश्चात हत्या भेल आरोप में पकड़ाल दूटा नाबालक के 12 जिला अदालत बाल सुधार गृह पठेबाक आदेश दिलक। न्यायाधीश प्रकाश कुमार अधिकारी के जिलास से मुद्दा के अंतिम निष्कर्ष नहीं लागत धरि दोनों नाबालक के बाल सुधार गृह में राख के आदेश देने श्रेष्ठदार राजकुमार दहाल बतौलन। बाल बालिका संबंधी ऐन 2075 आ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 की व्यवस्था हिसाब अदालत आदेश दिलक। संगे पीड़ित पक्ष के तत्काल पीड़ित राहत कोष से 2,00,000 क्षतिपूर्ति उपलब्ध करे वाले सेहो आदेश दिलक। अदालत में सरकारी वकील तथा जाहिर वाला के दिस से 4-5 गोटे कानून व्यवसायी बहस करित घटना गंभीर प्रकृति के भेल आरोपित के थुना मराई के पूर्व पक्ष करवाक मांग कयने छल। प्रहरी प्रतिवेदन स्वास्थ्य परीक्षण तथा पोलीग्राफ परीक्षण संबंधी विवरण सेहो अध्ययन कलाक बाद अदालत नाबालक के हक में लागू होय वाला कानूनी व्यवस्था के आधार बनाबैत बाल सुधार गृह पठेबाक निर्णय कयलक। घटना के अनुसंधानक क्रम में प्रहरी 12 गोटे के नियंत्रण में लेने अछि जाय मध्य 2 नाबालक के अदालत में पेश कयल गेल अछि। हुनका सबके ऊपर अपहरण शरीर बंधक जबरदस्ती करनी आ कर्तव्य जान संबंधी कसूर में अनुसंधान भ रहल प्रहरी जनौलक। हिरासत में रहल प्रोग्रेस चौधरी सहित अन्य 10 गोटे के अनुसंधान पूरा कर अदालत में पेश करबाक तैयारी भ रहल प्रहरी उपरीक्षक नरेंद्र कुमार बतौलनि। बर्दीवास उद्योग वाणिज्य संघ अपन सदस्य सबके सेवा सुविधा के लक्षित करत डिजिटल भुगतानी सेवा प्रदायक ई सेवा संघ के सहकार्य में निःशुल्क दुर्घटना एवं सुरक्षा योजना लागू कयलक। मध्य प्रदेश के व्यवसायिक क्षेत्र में एहन सुविधा पहिल आ सर्वथा नया पहल भेल बर्दीवास उद्योग वाणिज्य संघ जनौलक। संघ में नया सदस्य लेव वाला तथा सदस्यता नवीकरण कर वाला प्रत्येक व्यवसाय के निःशुल्क ई सेवा दुर्घटना सुरक्षा योजना उपलब्ध करेबाक व्यवस्था मिलाल गेल। बर्दीवास उद्योग वाणिज्य संघ आई सेवा बीच बहुत दिन समझदारी पत्र में हस्ताक्षर भेल संगे संघ में आबद्ध करीब 3,000 व्यवसाय इस सेवा के लाभग्राही भेल छथि। दुर्घटना सुरक्षा योजना अंतर्गत उपचार खर्च मृतक परिवार के सहयोग तथा अंत्येष्टि आ सब वाहन खर्च लगात के सुविधा समेटल गेल अछि। ई सुविधा आकस्मिक परिस्थिति में व्यवसाय के आर्थिक सहयोग पहुँचत से स्थानीय सबके कहब छन। व्यावसायिक हित संगे सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा के प्रत्याभूति करेबाक उद्देश्य के संग योजना संचालन में आनल गेल संख्याध्यक्ष दीपक कार्की बतौलनि। डिवीजन वन कार्यालय रौथर चूरे क्षेत्र में रहल राष्ट्रीय वन क्षेत्र में भेल अतिक्रमण खाली कराबा के लेल कहि का जारी केने सूचना के स्थानीय वन कार्यालय बीच विवाद उत्पन्न भेल अछि। डिवीजन वन कार्यालय रौथर मकवानपुर के बकैया गांव पालिका एक स्थित सीमावर्ती क्षेत्र में रहल बस्ती सेहो खाली करे के सूचना जारी कलक बाद स्थानीय वन कार्यालय बीच विवाद बढ़ल अछि। वन कार्यालय गत भादो एक गते सूचक क्रम में स्वयं हटावा के कहने छल। डिवीजन वन कार्यालय रौथर के निमित्त प्रमुख नेपाली शाह बकैया गांव पालिका वार्ड नंबर 1 में रहल बस्ती सही सूचना में जारी कयल गेल अन्य क्षेत्र रौथर के राष्ट्रीय वन क्षेत्र अंतर्गत परवला भिला से अतिक्रमित अई जमीन के अतिक्रमणकारी स्वयं खाली करबाक सूचना केने बतौलनि। भोटे कोसी बाढ़ पश्चात बीरगंज नाका से दैनिक 70% आयात बढ़ल बीरगंज भंसार कार्यालय जनौलक। विनाशकारी बाढ़ संगे रसुआ तातोपानी भंसार नाका अवरुद्ध भेलाक बाद चीन से आयात होय वाला कतेको सामान अवरुद्ध नाका परिवर्तन क बीरगंज से आब लगलाक बाद आयात बढ़ल। बीरगंज भंसार कार्यालय के प्रमुख भंसार प्रशासक कृष्ण प्रसाद मैनाली ई जानकारी दिलने। आब खेल समाचार। नेपाल ओमान के पराजित करत ACC प्रीमियर कप क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचल। मलेशिया के बायोमास ओवरल क्रिकेट मैदान में आई भेल सेमीफाइनल खेल में नेपाल ओमान ऊपर 87 रन के जीत हासिल करत प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचल। नेपाल जीत के लिए देने 148 रन के लक्ष्य पाछू करत ओमान 28.1 ओवर में सब विकेट के क्षति में 60 रन में समटायल छल। ओमान के लिए जतेंद्र सिंह 25 तथा जितेन कुमार रामानंदी 13 रन बनाबा बाहक अन्य खिलाड़ी दोहरा अंक सेहो जोड़ नहीं सकल। ओमान के लिए 60 रन में समेटवा क्रम में नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी आ संदीप लामिछाने समान
3-3 विकेट लेले त रोहित कुमार पौडेल र ललित राजवंशी समान 2-2 विकेट लेले थे। यसै पहिने टसारको पहिलो ब्याटिङ कैने नेपाल 45.4 ओभरमे 100 विकेटको क्षतिमे 147 रनको योगफल तयार कने छल। नेपालको लेल दिपेन्द्र सिंह एडी सर्वाधिक 51 रन बनौलेथ। ओ 76 बलमे 4 चौकाको सहयोगमे 51 रन बनाउने छलेथ। अहिना बसिर अहमद 47 रन बनौलेथ। देव खनाल 13 तथा आसिफ शेख 11 रन बनौलेथ। यही बाहेक अन्य कोनो खेलाडी दोहरा अङ्क सेहो बना बनि सकल। बॉलिङ दिस ओमानके जय ओडेडरा आ हसनैन शाह समान 3-3 विकेट लेलेथ। अहिना मोहम्मद इमरान 2 विकेट लेलेथ। शकील अहमद आ मुजिबुर अली समान 1-1 विकेट लेलेथ। अहि सँगै नेपाल फाइनलमे संयुक्त अरब एमिरेट्स सँगै भेट पक्का बनौलकै छ। आइबेल दोस्रो सेमी फाइनल खेलमे यूएई हङकङके हराबैत प्रतियोगिताके फाइनलमे पहुँचलै छ। फाइनल खेल भादो 27 गते सही दिन हात। फाइनलमे नेपाल यूएईके पराजित कैलक त एसिया कपमे अपन स्थान बना सकत। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दीवाससँग सुनि रहल मैथिली भाषामे समाचार पूरा भेल।

ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की अमेरिका यात्रा कार्यक्रम को मंत्रिपरिषद ने दे दी है मंजूरी। भाद्र 10 गते को आई भोटेकोसी बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण के लिए 7 खरब 23 अरब रुपए से अधिक खर्च होने का है अनुमान। नुआकोट स्थित तांदीखोला पुल का पुनर्निर्माण कर में लाया गया संचालन। धादिंग के गलसी से रसुआ के धुंचे तक सड़क संपर्क पर दिया गया जोर। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री के रूप में दीपक शाह नियुक्त। और चीन में कार्गो जहाज में आग लगने से 25 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में सहभागिता संबंधी विदेश भ्रमण कार्यक्रम को मंजूरी दी है। सिंह दरबार में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक ने असो 6 से 10 गते तक होने वाली संयुक्त राष्ट्र संघ की 81वीं महासभा में भाग लेने के कार्यक्रम को मंजूरी दी है। सरकार के प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल ने यह जानकारी दी। बैठक ने भारत की नई दिल्ली में आयोजित होने वाली नेपाल इंडिया इंटर गवर्नमेंटल सब कमेटी की बैठक में भाग लेने के लिए नेपाली वार्ता टोली गठित करने और अनुचित लेन देन मीटर ब्याज अपराध नियंत्रण संबंधी विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति देने का निर्णय किया है। यह जानकारी प्रवक्ता पोखरेल ने दी। बैठक ने काठमांडू भक्तपुर ललितपुर सप्तरी और दांग जिलों के कुल 27 स्थानीय तहों के 17,438 गरीब परिवारों की सूची को मंजूरी देने का निर्णय किया है। इसी तरह शिक्षक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में डॉ. हरि प्रसाद लमसाल, सदस्य के रूप में राम शरण सापकोटा और महिला सदस्य के रूप में विष्णु घिमरे रिमाल को नियुक्त करने का निर्णय भी बैठक ने किया है। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में सांसदों ने भोटेकोसी बाढ़ में लापता लोगों की तलाश और बचाव कार्य को और तेज करने पर जोर दिया है। सांसदों ने बाढ़ प्रभावित बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष पैकेज, उद्योगी व्यवसायियों के लिए राहत तथा प्रभावित क्षेत्रों में बीमा व्यवस्था जल्द लागू करने की मांग की। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के लिए तत्काल राहत के साथ दीर्घकालीन पुनर्वास की व्यवस्था करने और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की तलाश, बचाव तथा पुनर्स्थापना को प्रभावी बनाने की मांग की है। सांसदों ने एलपी गैस की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने और जिंजी विद्रोह के दौरान मृतकों के परिजनों तथा घायलों के साथ किए गए समझौतों को पूरा करने की भी सरकार से मांग की। राष्ट्रीय सभा ने नेपाल विशेष सेवा आयन 2042 की पूर्व व्यवस्था को बहाल करने संबंधी विधेयक 2083 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। बैठक में सांसदों ने बाढ़, भूस्खलन, हिमताल और हिम पहिरो जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए प्रभावी पूर्व सूचना प्रणाली विकसित करने पर जोर दिया। नेपाली कांग्रेस के सांसद सुनील बहादुर थापा ने भोटेकोसी बाढ़ के बाद जलवायु परिवर्तन से हुए नुकसान के मुआवजे के लिए सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र को भेजे गए पत्र को सार्वजनिक करने की मांग की। सांसदों ने भोटेकोसी बाढ़ से हुए नुकसान का वैज्ञानिक मूल्यांकन, जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम प्रभावी बनाने तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करने की मांग की है। इसी तरह एलपी गैस की कालाबाजारी रोकने और राजबिराज स्थित गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल में पैसे नहीं होने के कारण प्रसूता को अस्पताल से निकालने के मामले में कार्रवाई की मांग की गई। नवनियुक्त उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री दीपक कुमार शाह ने आज राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल के समक्ष पद तथा गोपनीयता की शपथ ली है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की उपस्थिति में राष्ट्रपति कार्यालय में आज आयोजित समारोह में नवनियुक्त मंत्री शाह ने शपथ ली। इससे पहले आज ही उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री गौरी कुमारी यादव ने प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के समक्ष अपना इस्तीफा सौंपा था।
पद बहाली करने के बाद मंत्री दीपक कुमार शाह ने कहा कि खाना बनाने वाली एलपी गैस के बिक्री वितरण में दिख रहे समस्या समाधान की ओर मैं गंभीर होकर काम करूंगा। भोटे कोसी नदी की विनाशकारी बाढ़ से बह गया तादी खोला पुल पुनर्निर्माण कर फिर से चालू कर दिया गया है। पुल संचालन में आने के साथ ही धादिंग के गलची से रसुआ के धुंचे तक सड़क संपर्क बहाल हुआ है। पृथ्वी राजमार्ग के कृष्णभीर क्षेत्र में अवरुद्ध सड़क को भाद्र महीने के भीतर फिर से चालू करने के लिए निर्माण कार्य तेज किया गया है। पहाड़ काटकर करीब 250 मीटर नया ट्रैक बनाने के लिए 10 महीने और 30 कर्मचारी लगाए गए हैं। 10 मशीनें और 30 कर्मचारी लगाए गए हैं। सशस्त्र पुलिस ने निर्माण स्थल पर फ्लाइट लाइट लगाई है, जिससे रात में भी रोजाना 12 से 14 घंटे काम हो रहा है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।

0: प्राप्त गरौँ।
1: प्ले स्टोर वा एप स्टोरबाट सजिलै नेपाल टेलिकमको एप डाउनलोड गर्न सकिन्छ।
2: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
3: अब बाँकी समाचार। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी हानि और नुकसान कोष ने नेपाल के पत्र का जल्द से जल्द जवाब देने के लिए पहल किए जाने की जानकारी दी है। विनाशकारी भोटे कोसी बाढ़ से हुए नुकसान के तत्काल संबोधन के लिए नेपाल ने भाद्र 15 गते कोष को पत्र भेजा था। कोष ने आज वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले और कृषि वन तथा पर्यावरण मंत्री गीता चौधरी को पत्र भेजकर नेपाल के प्रति एकजुटता व्यक्त की है। सांसदों ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों और संकटों से निपटने के लिए भू राजनीतिक सहयोग सहित अंतर्राष्ट्रीय प्रयास जरूरी बताया है। प्रतिनिधि सभा की कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समिति की आज की बैठक में सांसदों ने भोटे कोसी और त्रिशूली बाढ़ से कृषि एवं प्राकृतिक स्रोतों को हुए भारी नुकसान के बाद नदी और पर्वत संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहल पर जोर दिया है। उन्होंने आपदा के बाद पर्यावरणीय पुनर्स्थापना के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जलवायु न्याय और क्षतिपूर्ति का मुद्दा मजबूती से उठाने की आवश्यकता बताई। सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन में नेपाल का योगदान नगण्य होने के बावजूद नेपाली नागरिक इसके गंभीर प्रभाव झेल रहे हैं। ललितपुर में आज दक्षिण एशिया वन्य जीव कानून परिवर्तन नेटवर्क की पहली महासभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वन्य जीव अपराध नियंत्रण के लिए मजबूत कानून, सक्षम संस्थाएं, पर्याप्त संसाधन और प्रभावी समन्वय जरूरी है। एशिया की जैव विविधता की रक्षा साझा जिम्मेदारी है। कानून न्याय तथा संसदीय मामलों की मंत्री शोभिता गौतम ने कहा है कि सरकार कानून और नीतिगत स्तर पर मौजूद अस्पष्टताओं को दूर करने के लिए गंभीरता से काम कर रही है। प्रतिनिधि सभा की कानून न्याय तथा मानव अधिकार समिति की आज की बैठक में उन्होंने कहा कि फैसलों के कार्यान्वयन में कुछ समस्याएं सामने आई है, इसके लिए नीतिगत स्पष्टता जरूरी है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीन के सरकारी चैनल सीसीटीवी ने बताया है कि पूर्वी चीन के एक बंदरगाह पर खड़े विदेशी झंडे वाले मालवाहक जहाज में आग लगने से कम 25 लोगों की मौत हो गई है। सीसीटीवी के मुताबिक जहाज पर सवार 42 लोगों में से 17 को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिनमें से 5 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालात स्थिर है। राष्ट्रपति सी जिनपिंग ने इससे पहले बड़े पैमाने पर खोज और बचाव अभियान चलाने के लिए कहा है। जहाज मेंटेनेंस ने पूर्वी चीन के किंगदाओ शहर में एक शिपयार्ड में खड़ा था, तभी स्थानीय समय अनुसार करीब 11:15 बजे इसमें आग लग गई। सीसीटीवी के अनुसार इस आग पर काबू पाने में 3 घंटे से ज्यादा समय लगा। समाचार एजेंसी एएफपी को एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि जहाज से घना धुआं उठ रहा था। सरकारी मीडिया की ओर से जारी तस्वीरों में जहाज का नाम ओशिन मेलोडी दिखाई दिया। यह लाइबेरिया के झंडे वाला 190 मीटर लंबा मालवाहक जहाज है, जो ट्रैकिंग साइट मैरिन ट्रैफिक के अनुसार 31 अगस्त को किंगदाओ पहुंचा था। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की अमेरिका यात्रा कार्यक्रम को मंत्रिपरिषद ने दे दी है मंजूरी। भाद्र 10 गते को आई भोटे कोसी बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण के लिए 7 खरब 23 अरब रुपए से अधिक खर्च होने का है अनुमान। नुआकोट स्थित तादी खोला पुल का पुनर्निर्माण कर में लाया गया संचालन, धादिंग के गलसी से रसुआ के धुंचे तक सड़क संपर्क पर दिया गया जोर। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री के रूप में दीपक शाह नियुक्त और चीन में कार्गो जहाज में आग लगने से 25 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।
0: फोनमा कुरा गर्दा आवाज स्पष्ट नआएर दिक्क लाग्छ।
4: अब अनुभव गर्नुहोस् नेपाल टेलिकम 4G भोल्टे।
0: भोल्टे भोइस ओभर LTE अब तपाईँको हरेक कुराकानी अझ स्पष्ट, अझै जीवन्त।
4: HD भोइस क्वालिटीसँग कम ब्याकग्राउन्ड नोइज र अल्ट्रा क्लियर आवाज।
0: यस्तो अनुभव मानव तपाईँले कुरा गरिरहनु भएको व्यक्ति तपाईँको छेउमै हुनुहुन्छ।
4: र अझ रमाइलो कुरा,
0: फोनमा कुरा गर्दै गर्दा पनि चलाइरहनुहोस् 4G स्पिड इन्टरनेट।
4: क्लियर कॉल्स र फास्ट इन्टरनेट एकै साथ।
0: सेवा सुचारू गर्न आफ्नो फोनमा #444 हैश डायल गर्नुहोस्।
5: 4G भोल्टे।
2: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।

जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है मंजिल, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। इन्हीं पंक्तियों के साथ आपका स्वागत है रेडियो नेपाल की प्रस्तुति और आपके प्यार व मिठास भरे हिंदी सदाबहार गीतों के कार्यक्रम मधुरिमा में। मैं हूं रमिता यादव और तकनीकी तौर पर हमारा साथ दे रहे हैं प्राविधिक मित्र पुष्प रत्न बज्राचार्य जी। दोस्तों, मीडियम वेव 576, 684, 792, 810 और 1143 किलोहर्ज के साथ साथ एफएम बैंड 98, 100, 103 मेगाहर्ज पर, साथ ही ऑनलाइन के माध्यम से www.radionepal.gov.np और www.onlineradionepal.gov.np पर एक साथ आप मधुरिमा कार्यक्रम को लाइव सुन रहे हैं। इसे आप रेडियो नेपाल के मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन सकते हैं। इसके अलावा बहुत से मित्र मधुरिमा हिंदी फेसबुक पेज के माध्यम से लाइव देख भी रहे हैं और अगर आप भी कार्यक्रम को लाइव देखना चाहते हैं तो मधुरिमा कार्यक्रम के फेसबुक पेज मधुरिमा हिंदी को लाइक और फॉलो करें ताकि कार्यक्रम शुरू होते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप कार्यक्रम के लाइव वीडियो के साथ जुड़ पाएं और अपने मन की बात लाइव कॉमेंट के जरिए साझा कर पाए। और आप यदि किसी कारणवश लाइव न भी देख पाए तो बाद में भी इसे मधुरिमा हिंदी फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। साथ ही इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि बहुत से नए मित्र रेडियो नेपाल के साथ जुड़े और मधुरिमा के इस बड़े परिवार का हिस्सा बने। हर गुरुवार रात 10 बजे के हिंदी समाचार के तुरंत बाद करीब 50 मिनटों के इस कार्यक्रम में आज बारी है आपके प्यार और मिठास भरे पत्रों की। तो दोस्तों, ये पहला पत्र है राजेश शर्मा जी का, जो कि हैं विराटनगर मोरंग नेपाल से। लिख रहे हैं, आदरणीय मधुरिमा कार्यक्रम के संचालक जी, सादर नमस्कार। मैं आपके कार्यक्रम का नियमित श्रोता हूँ। हर सप्ताह मधुरिमा कार्यक्रम सुनकर मन को बहुत खुशी और सुकून मिलता है। खासकर श्रोताओं को अपनी शायरी, कविता और गीतों के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर देना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपके कार्यक्रम में अपनी एक छोटी सी शायरी प्रस्तुत करना चाहता हूँ। रिश्ते वो नहीं जो दुनिया को दिखाए जाए, रिश्ते वो नहीं जो दुनिया को दिखाए जाए, रिश्ते वो हैं जो दिल से निभाए जाए। चाहे कितनी भी दूरियां क्यों ना हो, दरमियां सच्चे रिश्ते हमेशा दिल के करीब पाए जाए। इसके साथ मेरी पसंद का गीत तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो सुनाने की फरमाइश है मेरी। मधुरिमा कार्यक्रम की पूरी टीम को मेरी ओर से ढेरों शुभकामनाएं। आपका श्रोता राजेश शर्मा।

तो दोस्तों ये गीत आप सभी ने सुना फिल्म खामोशी से, जो कि सन 2002 में रिलीज हुई थी, और इस गीत में आवाज है जगजीत सिंह की। इस गीत के गीतकार हैं कैफी आजमी और संगीतकार हैं जगजीत सिंह। ये पत्र है अनिल ताम्रकार जी का, भारत से लिख रहे हैं। जीवन के पहलुओं को लेकर जब कभी भी हम चर्चा करते हैं तो जीवन उनका चर्चित रहता है जो समाज के लिए, दूसरों के लिए, दूसरों की खुशियों के लिए अपना जीवन जीते हैं। मतलब ये है कि जब तक हम दूसरों के दुख दर्द को नहीं समझेंगे, अपने दुख के दर्द के प्रति अनजान रहेंगे। जिंदगी उसी की पहचान बनती है जिसकी जिंदगी में दूसरों की जिंदगी समाहित रहती है, और यही जिंदगी आदमी की ना रहने के बावजूद यादगार बनती है। किसी की मुस्कुराहट पर हो निराश, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। फिल्म का नाम अनाड़ी, शिवाजी चौक कटनी से, अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, राजू ताम्रकार, रजन, रजक, संजीव वर्मा, विपिन गुप्ता, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू, सोना, मोना, हनी, यस और उनके मम्मी पापा। कार्यक्रम में ये गीत सुनाने की कृपा करें।

0: तो दोस्तों, ये गीत आप सभी ने सुना फिल्म अनाड़ी से, जो कि सन 1959 में रिलीज हुई थी। इसमें आवाज है मुकेश और इस गीत के गीतकार है शैलेंद्र, संगीतकार है शंकर जयकिशन। ये पत्र है सरिता थापा जी का, जो कि है पोखरा 8 कास्की नेपाल से। लिख रही हैं, प्रिय मधुरिमा कार्यक्रम, सब प्रेम नमस्कार। आपका कार्यक्रम मेरे पसंदीदा रेडियो कार्यक्रमों में से एक है। आपकी मधुर आवाज और सुंदर गीतों के कारण हर बार कार्यक्रम सुनते हुए समय का पता नहीं चलता। आज आपके लिए कुछ पंक्तियाँ। कभी किसी की मुस्कान की वजह बनो, कभी किसी के दर्द की दवा बनो। जिंदगी तो सभी जीते हैं अपने लिए, कभी किसी के लिए जीने की वजह बनो। मेरी आज की खास फरमाइश है, लग जा गले। कृपया ये खूबसूरत गीत सुनाकर मेरे साथ साथ सभी श्रोताओं का दिल भी खुश कर दीजिए। मधुरिमा कार्यक्रम यूं ही श्रोताओं के लिए दिलों में अपनी मिठास घोलता रहे। आपकी श्रोता सरिता थापा, पोखरा से।
1: Thank you.

तो दोस्तों, ये गीत आप सभी ने सुना फिल्म वो कौन थी से, जो कि सन 1964 में रिलीज हुई थी, और इस गीत में आवाज है लता मंगेशकर की। इस गीत के गीतकार है राजा मेहंदी अली खान और संगीतकार है मदन मोहन। ये पत्र है संतोष अधिकारी जी का, जो कि हैं बुटवल 11 रुपनदेही नेपाल से। लिख रहे हैं, आदरणीय मधुरिमा परिवार नमस्कार, मैं काफी समय से आपका कार्यक्रम सुन रहा हूँ। मधुरिमा के गीत, शायरी और कविताएं सुनकर पुरानी यादें ताजा हो जाती है। आज मैं अपनी कुछ पंक्तियां आपके माध्यम से सभी श्रोताओं तक पहुंचाना चाहता हूं। यादों की किताब में कुछ पन्ने पुराने हैं, कुछ किस्से अपने हैं, कुछ बेगाने हैं। वक्त गुजर गया मगर यादें नहीं गई, कुछ लोग आज भी दिल के बहुत करीब हैं। आज मेरी फरमाइश है, कभी कभी मेरे दिल में ये गीत उन सभी लोगों को समर्पित है जो आज भी मेरी यादों में बसे हुए हैं। कार्यक्रम की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका श्रोता संतोष अधिकारी बुटवल से।

तो दोस्तों, ये गीत आप सभी ने सुना फिल्म कभी कभी से, जो कि सन 1976 में रिलीज हुई थी। इस गीत में आवाज है मुकेश की। इस गीत के गीतकार है साहिर लुधियानवी और संगीतकार है खयाम। ये पत्र है पूजा कार्की, जो कि धरान 15 सुनसरी से हैं, लिख रही हैं, मधुरिमा कार्यक्रम के सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपके कार्यक्रम को नियमित रूप से सुनती हूँ। गीतों के साथ साथ श्रोताओं की शायरी और कविताएं सुनना मुझे बहुत पसंद है। आज मेरी ओर से एक छोटी सी शायरी, मोहब्बत नाम है जिसका वो एहसास बन जाता है, किसी की याद में दिल खाश बन जाता है। हजारों लोग मिलते हैं जिंदगी के सफर में, मगर कोई एक ही दिल के पास बन जाता है। मेरी आज की पसंद का गीत पहला नशा है। कृपया ये गीत जरूर सुनाइएगा। आपकी श्रोता पूजा कार की धरान से।

सुना जो जीता वही सिकंदर मूवी से, जो कि सन 1992 में रिलीज हुई थी। इस गीत में आवाजें हैं उदित नारायण, साधना सरगम की। इस गीत के गीतकार है मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार है जतिन ललित। ये पत्र है दीपक गुरुंग जी का, काठमांडू 3 से। लिख रहे हैं, नमस्कार मधुरिमा परिवार, रेडियो के माध्यम से सभी श्रोताओं और कार्यक्रम की पूरी टीम को मेरा हार्दिक अभिवादन। मधुरिमा कार्यक्रम गीत संगीत के साथ साथ भावनाओं को भी जोड़ने का सुंदर माध्यम है। आज मैं अपनी कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सफर छोटा हो या लंबा, मुस्कुराते रहना, मुश्किलों के बीच भी उम्मीद जगाते रहना, कल क्या होगा किसने देखा है यहाँ, आज को दिल से जीना और खुशियाँ बांटते रहना, मेरी आज की फरमाइश है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। ये गीत मैं अपने सभी प्यारे दोस्तों को समर्पित करना चाहता हूँ। आपका श्रोता दीपक गुरुंग, काठमांडू से।

तो दोस्तों, ये गीत आप सभी ने सुना फिल्म शोले से, जो कि सन 1975 में रिलीज हुई थी। और इस गीत में आवाजें हैं मन्ना डे, किशोर कुमार की। इस गीत के गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं आरडी वर्मन। ये पत्र है मनीषा भंडारी जी का, नेपालगंज 4 बांके से। लिख रही हैं, प्रिय मधुरी माँ, सादर नमस्कार। आपका कार्यक्रम सुनते समय कभी खुशी मिलती है तो कभी दूर रह रहे अपने प्रियजनों की याद आ जाती है। सच कहूं तो गीत और शायरी दिल की बात कहने का सबसे खूबसूरत माध्यम है। आज मेरे दिल की कुछ बातें, दूर होकर भी तुम मेरे पास लगते हो, खामोश रहकर भी बहुत खास लगते हो। जब भी आती है चेहरे पर मुस्कान मेरे, लगता है तुम आस पास लगते हो। मेरी खास फरमाइश है, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं। कृपया ये गीत मेरी फरमाइश पर जरूर बजाइएगा। आपकी श्रोता मनीषा भंडारी, नेपालगंज से।

तो दोस्तों, ये गीत आप सभी ने सुना फिल्म आंधी से, जो कि सन 1975 में रिलीज हुई थी। और इस गीत में आवाजें हैं किशोर कुमार, लता मंगेशकर की। इस गीत के गीतकार है गुलजार और संगीतकार है आरडी वर्मन। ये पत्र है अमृत श्रेष्ठ जी का, हेटौरा 5 मकवानपुर से। लिख रहे हैं आदरणीय मधुरिमा कार्यक्रम के संचालक जी, सादर नमस्कार।

और सबसे पहले मधुरी माँ कार्यक्रम की पूरी टीम को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका कार्यक्रम सुनना मेरे लिए मनोरंजन के साथ साथ खुशी और सकारात्मक ऊर्जा का भी माध्यम है। आज की मेरी कुछ पंक्तियां हैं, हार कर बैठना मेरी फितरत नहीं, मुश्किलों से डरना मेरी आदत नहीं, रास्ते चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, मंजिल पाने की उम्मीद कभी कम नहीं। आज मैं अपनी फरमाइश पर जिंदगी एक सफर है सुहाना गीत सुनना चाहता हूँ। ये गीत मुझे हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आपका श्रोता अमृत श्रेष्ठ हेटौरा से। तो दोस्तों, आज का ये आखिरी गाना फिल्म अंदाज से, जो कि सन 1971 में रिलीज हुई थी, और इस गीत में आवाज है किशोर कुमार की। इस गीत के गीतकार है हसरत जयपुरी और संगीतकार शंकर जयकिशन। और ये गाना रखने से पहले आप सभी से कहना चाहते हैं, दोस्तों ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है अपनी प्रतिक्रिया हमें पत्र के जरिए जरूर दे। साथ ही अपने पत्र में शेरो शायरी, कविता या गजल शामिल करना ना भूले। हमारा पता है कार्यक्रम मधुरिमा, रेडियो नेपाल, सिंह दरबार काठमांडू, पोस्ट बॉक्स नंबर 634। ईमेल पता है madhurimahindi@gmail.com। साथ ही फेसबुक पेज के जरिए भी आप अपनी बातें इस कार्यक्रम तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आपको विजिट करना होगा www.facebook.com/madhurima-hindi। आज के इस कार्यक्रम से प्राविधिक मित्र पुष्प रत्न वज्राचार्य जी के साथ मैं रमिता यादव आप सभी से इजाजत चाहती हूँ। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: राम राम सम्झियो
1: राम वालेकुम सम्झियो
2: वालेकुम सलाम।
0: अब छोराछोरी मन पराइहाले अब तपाईँ हामी मात्रै बाजेर के गर्ने हो र अब मिल्नै त परेन होइन।

की परिभाषा गोविंद राधे, श्री कृष्ण निष्काम प्रेम बता दे। हानि की परिभाषा गोविंद राधे, श्री कृष्ण विमुखों का संग बता दे। वास्तविक लाभ एवं अपूर्णनीय हानि को निरूपण गरिएको राधा गोविंद गीत को यो अनमोल दोहा का साथी श्री राधा माधव समिति नेपाल श्यामा श्याम धाम टिमी द्वारा संचालित कार्यक्रम अध्यात्म संदेश में यहाँहरुलाई राधे राधे को अभिवादन। इस कार्यक्रम में यहाँहरुले विशेष रूपले जगतगुरु श्री कृपालुजी महाराज का प्रचारक स्वामी श्री हरिदास जी को प्रवचन र साथमा जगतगुरु श्री द्वारा निरचित रसमय संकीर्तनहरु श्रवण गरी विशुद्ध सत्संग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् कार्यक्रमको शुभारम्भ गरौं सुमधुर पद गायनबाट। प्रस्तुत पद जगतगुरु श्री कृपालुजी महाराजद्वारा रचित प्रेम रस मदिराबाट लिएको हो।